0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बर रही थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कॉपी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: विश्राम पछि खोज खबरमा पुनः स्वागत छ। बपालो जनआवाजको टीकापुर अस्पतालमा दैनिक 600 भन्दा बढ़ी सेवा गराई आउने गरेका छन्। आजको जनआवाजमा हामीले सेवा लिन आएका केही नागरिकलाई सेवा कस्तो पाउनुभयो भनी सोधेका छौं।
4: नमस्कार, मोरिक नाउ रीता चौधरी हो, बनगाउँ मै अस्पताल आटो 7:30 बजे लगाइनु त अभिन टक्कर रुपना न अपन चिन्ह दिनल मनै आगा करा लेथ अनि हमरा नै चिन्ह मनै त अस्पताल पाछा करा लेथ मै एक ठो कागज न दारु ना, जस्तै कि बीमा भराइ लाति जस्तै बैसाख के लास्ट ल हम रिनो करेनु बीमा 3 महिना पछि थारे थिए चेक कर थी तो दसरो अठारह के चेक कराया ला तू 3 महीना पुगी नौकरी लग बीमा तो फिर 800 रुपया लेने 6 महीना हूँ मैं तो बुझे ना ऐसे कठ हो 6 महीना के बाद में करे वो दवाई तो हूँ नहीं लगी रुपया हूँ गये तो हटे बीमा भरा ने फिर रुपया लागा था तब मारे खाई का हो बजट की नहीं से कले तू।
5: मेरा नाम मोहित भंडारी हो, मत लंकी से खरोला बाट आगो, मजे बिहान 9 बजे बाट आगो यो टीकापुर अस्पताल में, और बिहान 9 बजे बाट आउँदा यहाँ लाइन में बसि राख्नु परेछ, अनि टोकन नंबर सिस्टम पनि यहाँ को उपलब्ध रहेनछ, फाइल राखेर बोलाइ राख्नु भएको छ, अब आफ्नो सिस्टमले बोलाउनु भएको हो कि अब यहाँ मान्छेहरू घुसाइ राख्नु भएको छ त्यो थाहा भएन, बस्ने पनि राम्रो व्यवस्था छैन, यहाँ धेरै जनताहरूले बाहिर घाममा बसिराख्नु परेछ, फ्यानहरू पनि पर्याप्त छैन, यहाँ धेरै बच्चाहरू पनि रोइरहेको अवस्था छ, त्यही हो यहाँको अब अलिकति सुधार गरिदिनु पर्यो यो टीकापुर समिति हो कि अस्पतालले, अब के कस्तो हुन्छ यहाँको ध्यान आकर्षण गरेर यो के कस्तो भइरहेछ यहाँको समस्याहरू एकचोटि बुझिदिनु पर्यो।
6: नमस्कार, बिहान 7 बजे आएको अहिलेसम्म पालो पाइरहेन, अनि आफ्नो मान्छेलाई मात्र भित्र हालिरहन, हामीलाई बाहिर गरिरहन, अनि के गर्ने होला, सुविधा अलि प्राप्त गराइदिनु पर्यो, सरकारी हस्पिटल भए पनि अलि सेवा दिनु पर्यो, यही छ मेरो। अब
3: यसै जनावरसँगै खोज खबर सकियो, अन्त्यमा जाँदा जाँदै खबरका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कैलालीका सामुदायिक वनहरू वर्षेनी हजारौं वृक्ष रोप्दै तर रोपेका बिरूवा बचाउनु भने सामुदायिक वनलाई चुनौती धेरै। बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि याड धनगढ़ी स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै विद्यालय पछिको अतिरिक्त समय बाल बालिका व्यस्त राख्नुपर्ने वडाध्यक्ष उपानेको भनाई। सुदूरपश्चिममा सवारी दुर्घटनाको अवस्था चिन्ताजनक, 3 वर्षमा 569 जनाको मृत्यु। र कैलालीमा 1 वर्षमा 4,84,000 पशु चौपायालाई विभिन्न रोग विरूद्धको खोप लगाइयो। हवस् त, अहिलेलाई खोज खबर यति नै। प्राविधिक मित्र छपिलाल चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेको खोज खबरबाट म ईश्वर सावत बिदा हुन्छु। सामुदायिक रेडियो टीका कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।

0: कबू का पिए रही था, कबू केंसिले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउ से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई? कबू लड़का कॉपी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक थो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था?
0: कहाँ से लनबो? वो तो कहाँ हो टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में। रट गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: बाबू, ए बाबू, कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ है ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
6: उपभोक्ता वर्ग में टीकापुर नगरपालिका को अनुरोध, आफूलाई आवश्यक औषधि, खाद्यान्न, पेय पदार्थ र अन्य सामानहरू खरिद गर्दा उपभोग्य मिति, मूल्य सूची, लेबल आदि हेरेर मात्र खरिद गरौं।
7: आफूले खरिद गर्न लागेको सामानको उत्पादन, भण्डारण वा बिक्री स्थलमा आवश्यक सरसफाई छ छैन हेरेर मात्र खरिद गरौं।
6: जोखेर लिनुपर्ने सामानहरू खरिद गर्नु अघि ढक, तराजुको अवस्था ठिक छ छैन हेरौं।
7: वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बिल बिजक लिने बानी बसालौं।
6: सामानको उपभोग्य अवधि सकिएको भए वा पानीले भिजेको, प्याकिङ सामानको प्याकेट फुटेको, ओसिएको वा गुणस्तरहीन भए त्यस्तो सामान खरिद नगरौं।
7: अखाद्य रंग वा मापदण्ड विपरीतका वस्तुहरूको मिसावट भएका खाद्य तथा पेय पदार्थहरू खरिद नगरौं।
6: लेबल नभएको वा लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना र वस्तुको ब्याज नम्बर, तौल, अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य उल्लेख नभएको प्याकिङ सामानहरू खरिद नगरौं।
7: साथै उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट भएको वा पुनः लेबलिङ गरेको वस्तु समेत प्रयोग नगरौं।
6: आफ्नो इच्छा अनुसार रोजेर माल सामान वा सेवा खरिद गर्न पाउने, खरिद गर्दा मूल्यमा मोल मोलाई गर्न पाउने र आफूले खरिद गरेको सामानमा कुनै त्रुटि भए तोकिएको समयभित्र फिर्ता गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो।
7: खरिद गरेको माल सामान र सेवाको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य वा जीवधनमा कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी हुन गएमा सम्बन्धित विक्रेताबाट कानून मजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिने उपभोक्ताको अधिकार हो।
6: उपभोक्ता अधिकारको बारेमा आफू पनि सचेत बनाऊ र अरूलाई पनि सचेत बनाऊ।
7: कुनै वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव वा उपभोक्ता हित विपरीतका अन्य कुनै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू भए गरेको थाहा पाएमा तुरन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, वडा कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि वा टीकापुर नगरपालिकाको फोन नम्बर 091-560-384, 091-560-118 र उपभोक्ता हित संरक्षण उपशाखाको मोबाइल नम्बर 98-48-43-35-83 जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ।
6: बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, टीकापुर नगरपालिका।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। बाल मैत्री स्थानीय शासन किला की यार्ड ढनगढ़ी स्थानीय सरकार संगे सहकार्य करती विद्यालय पाछे के अतिरिक्त समय में बाल बालिका हुकुरन बिप्टेले धर पर्न वाराध्यक्ष ने उपाने के कहाई। सुरपश्चिम में सवारी दुर्घटना में अवस्था चिंताजनक 3 वर्ष में 569 जहन के मौत हो। कैलाली में 1 वर्ष में 484,000 पशु चौपाय में तमाम रोग विरुद्ध के खोप लगा गिल। आप पूरा खबर टीकापुरमा सामुदायिक बनुवामा युवा हुकरनके सहभागिता विषयक छलफल कार्यक्रम हुल्बा। सामुदायिक बनुवा दिवस 2083 के अवसरमा विफेक दिनके टीकापुरके जनशक्ति सामुदायिक बनुवामा छलफल हुल्के हो। साबिकके खोटेना भुराखानी सामुदायिक बनुवामा से छुटल जनशक्ति सामुदायिक बनुवा खोटेना भुराखानी शीतल ओकर्ण रानी कर्णाली सामुदायिक बनुवाके संयुक्त आयोजनामा छलफल उल्की हो। छलफल कार्यक्रम में चारूथो सामुदायिक बनुआ उपभोक्ता समिति के पदाधिकारी तथा उपभोक्ता सहभागिता जनाएल रहे। छलफल में सामुदायिक बनुआ में आगामी दिन में काठी केलने हुके बनुआ में रलक तमाम आय आर्जन के दगड़ा जस्ते बेदबास उद्योग संचालन मच्छी पालन अम्लिशो खेती कागती खेती उसके बनुआ में मिनी पार्क लगायत की संरचना बनाई पर्ना विषय में छलफल हुआ। यी विषय समेत सामुदायिक बनुवा समेतना सेक्ले खण्डमा युवा हुकरन स्वरोजगार बनाइन सेक्ना छलफलमा निष्कर्ष निकाल्बा। जनशक्ति सामुदायिक बनुवा के अध्यक्ष दीर्घ बहादुर तिरुवा के अध्यक्षतामा हुई छलफल कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल के सचिवालय सदस्य निशा ठगुन्ना धामी प्रमुख अतिथि रहल रहे। टीकापुरमा ई टेक प्लेटफर्म के विषयमा शिक्षक हुकन संगे छलफल गरिल्वा। छलफलमा टीकापुर सामुदायिक विद्यालय के शिक्षक हुकन के सहभागिता जनाएल रहे। टीकापुरमा फैमिली ग्रुप अफ इंडस्ट्रीज कम्पनी प्राली से विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा केला घरीमा बैठके विद्यार्थी हुकन डिजिटल मार्फत पढ़न सहज हुए कहीके शिक्षक हुकन संगे छलफल आयोजना करगिल बताएगिल्वा। सामुदायिक विद्यालयमा निम्न आय स्तरमा रलक विद्यार्थी हुकरन फे पढ़न रलक वर्षे अब नै यह लागू गर्न समस्या हुना कर्णाली मावि शक्ति के प्रधान अध्यापक खुमानन्द ओली के कहाइबा। सरस्वती मावि के समेत लीलाराम ढुंगान से फे स्कूलमा डिजिटल सामग्री से पढ़ाइन अभ्यास नै रलक वर्षे जोन शिक्षा के लाग पूर्वाधार डिजिटल स्मार्ट बोर्ड माइक औस्तक रेकर्डिंग स्टूडियो विद्यालयमा आब्बा के अवस्थामा नै रलक शिक्षक हुकरन चुनौती रहल बटवैले बाटै। उसक सुनारा एकेडेमी मन से शिक्षा को विद्यार्थी उकरण के लग आवश्यकता अनुसार के इसे ढेर बात सीखे पैना हिमालय मावि के शिक्षक बुद्धिराम चौधरी के कहाइबा। कार्यक्रम में फैमिली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्राली के समेत संस्थापक प्रेम साउट से कर रहे। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलाली के गैल आर्थिक वर्ष 2082-83 में 484,450 पशु चौपाय तमाम रोग विरूद्ध के खोप लगागिल्वा। विज्ञ केन्द्र से जिला के 13 स्थानीय तह में गैया भैंसिनिया गोरू छेग्रीन लगायत के पशु चौपाय में विभिन्न रोग विरूद्ध के समेत खोप लगागिले खो। 2,68,000 छेग्री भेरियन में पीपीआर खोप तथा 1,56,600 गैया गोरू भैंसिनियन में खोरेट विरूद्ध के खोप लगागिल। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र कैलाली के सूचना अधिकारी विजय राम दमाई जानकारी देने बाटे। खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछे फेर सही बीस सुनतेर बीस सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो। सिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
2: संकायहरू
1: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस, नेपाली, हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स।
2: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
1: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस, डेभलपमेन्ट स्टडिज, सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स।
2: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे। कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि।
1: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्ययन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस।
2: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको।
1: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने।
2: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने।
1: आईसीटी, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने।
2: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाइफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा, शुद्ध खानेपानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको।
1: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने।
2: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
1: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
2: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर, कैलाली।
3: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त
4: थाहा पाउँदैछु। यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ, कस्तो गाह्रो हुन्छ। पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ, के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन।
3: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी। 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
7: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
6: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग, मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान, एमबीबीएस एमडी, न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्राम पछि फेरसे स्वागत बा। सुरपश्चिम प्रदेशमा सवारी दुर्घटनाकै अवस्था पाछक समयमा बढ़ती गेल बा। पाछक तीन वर्षमा के अवधिमा प्रदेशभर 2985 ठो सवारी दुर्घटना हुबेर 569 झन्के मौठुलबा कलसे 5053 जने घाइल हुलबाटै। राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय अटरियाके अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 देशभर 309 ठो दुर्घटना हुलमा ऊ दुर्घटनामा 172 जहनके मौठुलो 536 जने घाइल हुल बताएगिलबा। उसके औरो वर्ष दुर्घटनाके संख्या बढ़के 1203 पुगल रह। आर्थिक वर्ष 81-82 दुर्घटनामा 192 जहनके मौत हुई रह कलसे 2004 जने घायल हुई रह। गैल आर्थिक वर्ष के दुर्घटनामा अविन्थे संख्या बढ़लबा। आर्थिक वर्ष 2082-83 केल प्रदेशभर 1473 ठो दुर्घटना हुईबा। ऊ दुर्घटनामा 205 जनके ज्यान गुमाए लाटे कलसे 2543 जने घायल रह। तीन वर्ष के तथ्यांक तुलना करबेर सवारी दुर्घटना के संख्या निरन्तर बढ़ती गैल देखगिलबा। आर्थिक वर्ष 80-81 मा 309 दुर्घटना के संख्या हुईल बाकलसे 82-83 मा 1473 पुगल बताएगिलबा। बालमैत्री स्थानीय शासन केलाक वाडा पालिका मा विकास केला कि युवा ऐक्यबद्धता या धनगढ़ी के सहयोग में काम करते रहलबा। भचनी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में बाल बालिका के पाशुचित्र तैयार करके सूचक पूरा हुईल न हुईल बारे छलफल करके काम करते रहलबा। ओल्ड विजन इंटरनेशनल नेपाल के साझेदार संस्था मार्फत बाल बालिका उकरण के पोषण स्वास्थ्य गुणस्तरीय शिक्षा इनके अभिभावक उकरण जीविकोपार्जन में सहयोग पुगते रहलबा। यार्ड से बाल समृद्धि बाल मैत्री स्थानीय शासन में सहयोग करते रहलबा। यार्ड धनगढ़ी के सामाजिक परिचालक रतनलाल चौधरी बाल समृद्धि एकीकृत विकास केला खातेमालो परियोजना अंतर्गत बाल समृद्धि केला पोषण मैत्री और बाल मैत्री स्थानीय शासन केला काम करना के साथ ही 3400 जहन हे सेवा देती रहल जानकारी कराई रह। कार्यक्रम में अभिभावक बुना चौधरी अभिभावक भारत बैठके बाल बालिका हुकरण समस्या रहल बतोईटी अभिभावक नै हुके समेत बच्चा लागू औसत पर लग्ना बाल विवाह करना समस्या रहला को परिवार नै रहलक बाल बालिका सुरक्षित कराइन थप सचेतना जगाई पर्न बतोईले बाटै। उहाँ आपन बच्चा हुकरण के नियमित विद्यालय जैना पढ़ाई में रूचि समेत धरना करते रहल बतोईले बाटै। उसको कक्षा 11 पढ़ते रहलक बालक विकल्प से गुणस्तरीय शिक्षा के लग काम करते रहलक परियोजना तमाम बाल बालिका हुकरा पढ़ पैठी रलक बतोईटी सहयोग फे मिललो पढ़ना मिललक ओ अभिभावक हुकरा फे समय देती रहल बतोईले बाटै। अभिभावक ज्ञानु थापा से ओल्ड विजन इंटरनेशनल नेपाल यार्ड से ओल्ड विजन में दर्ता रलक बाल बालिका हुकरण की सिकाई सुधार में ढेर सहयोग करती रहल बा। अभिभावक हुकरण सचेतु जिम्मेवार बनैती रहल बतोईले बाटै। शांति काफे फे बाल बालिका में ढेर समेत घटना होते रहलक ओरसे शिक्षक उक्रे मनोविज्ञान बुझ के पढ़ पैना आवश्यक रहलक ओरसे अभिभावक से फिर घर में बाल बालिका उकरण सहयोग कर पर्ना बताइले बाटे। वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद न्यूपाने अभिभावक बाल बालिका मीडिया लगायत के सबको के साथ में बैठ के बाल समृद्धि के लाग छलफल करना पक्ष मजा रहल बतोईले बाटे। बाल बालिका उकरण सामाजिक जीवन शैली में एक रूपता लन्ना सकु जाने मिलके करसे इसम्भव रहल यार्ड से अपना उकरण महसूस करते रहल बतोईले बाटै। वहां लागू औसत मोबाइल के लट ड्रेसिंग चुनौती से लड़ते रहलक बतोईटी। बाल बालिका उकरण विद्यालय पाछे के अतिरिक्त समय में बीतेले रहल से कुलत से बचाई सकना बतोईले बाटै। खोज खबर में फिर से विश्राम पाछे फिर से रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
8: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिकाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
8: तपसिल
5: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सकल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी,
8: बैंकको सकल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी,
5: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
8: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
5: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
8: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
9: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
10: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08।
11: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमे जाइस् तो?
12: मै नै जाइ, उहाँ आफ्न अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
11: उहे मारे तो तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
12: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
13: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860-71-024 ओ 9846-77-417।
0: टीकापुर के सम्राट खनाल काठमांडू में संचालित चर्चित रियलिटी शो वॉइस ऑफ किड्स के सीजन 5 के सेमीफाइनल में प्रवेश करल बाटे। टीकापुर के दमर खनालो निर्मल कोइराला के समेत निर्मला कोइराला के छोटकी छावा सम्राट उत्कृष्ट गायक पन से वहां हे सेमीफाइनल में सम्पुगाइल बा। वॉइस अफ किड्स के फाइनल चरण में प्रवेश करना भोट के आवश्यक पर्न रहले कोर्से सकू टीकापुर वासी लगायत सुरपश्चिम वासी में अपना उकरण भोट करके वॉइस अफ किड्स के विजेता बनैना वहां अनुरोध करवाटे। सम्राट टीकापुर स्थित आरएमए स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ते रहवाटे। ओ राष्ट्रीय सभा से मनसून जन्ने विपद व्यवस्थापन में सरकार से पूर्व तैयारी संबंधी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है सर्वसमिति से स्वीकृत करलबा। सभा के बैठक में सांसद कमला पंत से प्रस्तुत करलक मनसून जन्ने विपद व्यवस्थापन के पूर्व तैयारी के संबंध में सरकार से ध्यान आकर्षण करने प्रस्ताव सभा से सर्वसमिति से स्वीकृत करल के हो। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैन से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से बालमैत्र स्थानीय शासन के लखिया ढनगरी स्थानीय सरकार संगे सहकारी करती विद्यालय पाछे के अतिरिक्त समय में बाल बालिका अंकुरन विप्तेले रह पर्ना वाड़ा दक्षिण ने उपाने के कहा। सुरपश्चिम में सवारी दुर्घटना के अवस्था चिंताजनक, 3 वर्ष में 569 जहन के मौत। ओकैलाली में 1 वर्ष में 484,000 पशु चौपाया तमाम रोग विरूद्ध के खोप लगाइयो। लीता बकलत थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सक बिहे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयत्न सुनते विराम।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सूचना सूचना सूचना
1: कंसल्टेंट इंडोक्राइनोलॉजिस्ट एमबीबीएस एमडी इंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबोलिज्म डाक्टर कृष्ण ऐरी ईशान मेडिकल हल टीकापुर में यही साउन 23 गते चौथो शनिवार का दिन बिरामी चेक जांच करना आउँदै हुनुहुन्छ।
0: निम्न समस्याहरू:
1: सुगर रोग,
0: गर्भकालीन मधुमेह,
1: महिला को शरीर में अनावश्यक रौं बढ़ने,
0: सुगर रोग का कारण होने समस्या जस्तै खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, दिन तथा रात में पटक पटक पिसाब लाग्ने, मुख सुक्ने, तिर्खा लाग्ने,
1: थायराइड कम जस्तै थकान लाग्ने, तौल बढ़ने, छाला सुक्खा हुने, कपाल झर्ने, अनुहार फुल्ने, चिसो बढी लाग्ने,
0: थायराइड बढी जस्तै तौल घट्ने, धड्कन बढ्ने, पसिना धेरै आउने, निन्द्रा नलाग्ने, हात कामने, चिचिडापन, आँखा फुलेर बाहिर आउने,
1: कम उमेरमा पनि प्रेसर, मोटोपन, कोलेस्ट्रोल बढ्ने,
0: उमेर अनुसार शरीरको उचाइ नबढ्ने वा धेरै अग्लो हुने, महिनावारीमा गडबडी र यौन इच्छामा कमी हुने। के तपाईँलाई निम्न मध्येका कुनै समस्या त छैन? छ भने ईशान मेडिकल हलमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9852311 र 9860114000। डाक्टर आउने समय प्रत्येक महिनाको चौथो शनिवार बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। सम्पर्क स्थान ईशान मेडिकल हल टिकापुर एक कैलाली।
2: याद गर्नुहोस्, जाँच गर्नुपर्ने बिरामी खाली पेटमा आउनु पर्ने छ।
3: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उनी ना पट्टा नि पैना त
4: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
3: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका अनसे के कतरा सुघर बनाकन ल बाटी
4: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाइ औ जाइका हु सामुएल ज्वेलर्स में गल गहना बनाई।
5: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
3: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846149261।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम एक सय एक मेगाहर्ज
1: राम राम समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज खोल के बैठन सकु रेडियो प्रेमी मैगर संगरी कर्म स्वागत के संगे अभिवादन करना चाहम मई चांद मोरी बोल अपने हुकन के संगे पुगे दिया थे संगरे रत्न जी ऑनलाइन में www.tikapurfm.org tikapurfm.org मार्फत हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत संसार के कोई भी कोनो से सकु जाने संसंगा थी कार्यक्रम गोचानी हमें हर एक हफ्ते के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब करीब 11 बजे समय हम सकु जाने संगे हुई नगर थी वहां से संगे हुई आप गलाटी लाइन खुला कर सकलाटी 091-5162-255 के नगर खुला कर सकलाटी भावना रुचि सुनैना कार्यक्रम गोचाली रेडियो मार्फत चिंजान हुई सकना कार्यक्रम गोचाली यही कार्यक्रम अपने हुकन के लघोट मारे अपने हुक्रे अपन भावना रुचि मेल खेना संगठन के संगे चिंजान हुईना जो मन परट अपने हुक्रे अपन अपन रानी बानी मेल खेना संगठन के संगे चिंजान हुईना जो मन परट लौरा लौंडी चाहे कोई संघरे हुक्रे फे आई सकी मई का जानकारी का नसा हम अपने हुक्रे के संगे और संग्रह के अभी के समय में क्या करती आती है चटकार झटकार घाम के संग संगे निंटी घूमती आती फुर्सत के समय में बाती अपन अपन काम धंधे में लागल बाती की मजे हुई भी कुशल मंगल आराम हुई भी एक छोटी समय निकाल के हले सफे साथ देख चाहे बिल्कुल ही ना भूले भी मई का अर्जी करना चाहूँ अपने हुक्म के संगे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत

0: हजुर कार्यक्रममा फेर से स्वागत गर्न चाहब अपने हुँ भर्खरै रेडियो खोलके बैठक बाटी गर्दैछ सुन्टी बाटी समुन्नत समाजके लगे समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज सुन्टी बाटी अनलाइनमा www.tikapuretham.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो सुन्टी बाटी कार्यक्रम गोचारी हवाई हरेक हप्ताको शुक्रबारको दिन सवा 10 बजे करिब करिब 11 बजेसम्म सबैजना सँगसँगै राखी वाचे सबैजना सँगसँगै राखी लाइन खुल्ला बाबै जुन ठाउँमा रेडियो नाइटीबाट अनलाइन माध्यम सक्यो बनाइ सक्थे या वहाँ ठाउँ चाहिँ सहभागिता चाहिँ देख सक्थे म फोन गर्ने गर्ने फोनमा केन्द्रित होके बार बटन जो प्रयास गर्ने पुरा बार बटन के जाँदै बिच सङ्घरे बनाएको चाहिँ बिचमा सङ्घरे हे बिर्कुलै ना छर्बी यानि कि सङ्घरे बनाइन छर्न बिर्कुलै चाहिँ ना कर देवी मै जानकारी गर्न चाहन्छु आफ्नो फोनको सँगै कोही सङ्घरे लाइन गर्ने गर्न संकेत मिलेर भए कहाँ से कौन सङ्घरे त्यहाँ हजुर राम राम हजुर राम राम
1: हजुर राम राम
0: कहाँ से के गर बोल सुनले हजुर कालू राम चौधरी
1: मालू राम
0: बांधु राम एक चोटी जोर से बोल दी तो
1: मालू राम चौधरी
0: माघू राम
1: मालू राम
0: मालू राम
1: हाँ
0: आपने के मतलब के बूझ नहीं मिला ना अपने के वो आवाज तब मारे मालू जी
1: बोलता
0: हजुर हजुर अच्छी मजा से लस कहाँ से कौन ठाउँ से हमरे बोलती
1: खरहौला और नंबर 7
0: लमकी चूहा वार्ड नंबर 7 खरहौला से लमकी चूहा 7 नंबर वार्ड खरहौला से
1: खरहौला से
0: खबर कैसी बा मालू जी के
1: अब तो ठीक है भाई
0: मजा ही बाटी हमरे दिन कैसी के बीता था आजकल मालू जी के ना
1: कैसी बीते अब भाई जर्नी ही लुगत हवाई टू हेरी
0: लुगत हवाई टू
1: हाँ
0: किन से लुगत हवाई थी
1: जर्नी है लुगत हवाई टू
0: अच्छा संगे संगे सहयोग कर रही थी
1: हाँ जर्नी है लुगत हवाई टू
0: और कौन सा काम करती हमरे
1: बस कबू आ सके जिसको कबू घुरे करे जिसको जानली
0: हाँ मालू जी
1: हाँ बताए कब आशा फिर दी कब बुरे कर दी छू मैं
0: हाँ बिल्कुल मालू राम जी अपने के भावना और रुचि सुनाई सकती अपने से संघर्य बनना कोई संघर्य हो कर नहीं कल से अपने के भावना रुचि कौ सा हुई
1: मजा मजा संघर्य बनाई ना और संघर्य बना के छोड़ छोड़ के लाई ना नहीं बना तो
0: मालू जी कहाँ बात बताए लगती अपने क्या करना मन पड़ा खास में अपने है
1: मैं गुरे करती हेरी सात बड़ी छू और आप संग्रह बना के मैं छोड़ के जीना
0: अपने के भावना और रुचि को संग्रह कर मन पड़ते है अपने से संग्रह बनना कोई संग्रह उकरण लागत गले से एकदम सहज से अपने है कैसी के भेटाई से जाए
1: अबे मोर नंबर हो अब नंबर से बेटा एक परी
0: बताए नंबर
1: 97 16
0: 79
1: 56
0: 28 इसी नंबर में एकदम सहज से अपने भेटाई से जाए मालू जी हाँ हाँ संघर्ष कर समझे से कटे
1: एक फोन नंबर बा 97 16
0: हाँ हाँ
1: 97 16 55
0: बताए बताए बताए
1: 97 16 55 80 97 16 55 80 85
0: समझे से किस संघर्ष ग्रहण
1: अब दे वो है हमारे साल ही आता है
0: आप एक लग विदा है
1: यहाँ अरे ये सब वायरस मने आते क्या यहाँ बात करते हैं
0: मालू जी आप एक लग विदा है राम राम मालू जी साथ दे रहे लमकी चूहा साथ खरौले से साथ दे रहे ढेर धन्यवाद देना चाहब सहभागी के लग वहां है। यदि वहां की भावना रुचि अपने मन पड़ती वहां से संघरे बनना बनैना जो मन लाग ठुकले से लमकी चूहा 7 नंबर वाड़ा खरौला गांव सम्पर्क नम्बर 16 नम्बर मार्फत एकदमै सहज जस्तै उहाँ भेटाइ सकिकन अपने मैगर जानकारी गर्न चाहन आपके पाला में अपने के फोन पे बिल्कुल सफल हुई से की लाइन खुला बाई 0-91-561-255 के दगर खुला बाई भावना रुचि सुनैना कार्यक्रम गोचियाली संघरे बन्न ओ बनाई सेकना अपने हुक्रहन के भावना रुचि मेल खाना संघन के संगे अपने चिंजान हुई ना जो मन प्रकट कर अपने आई सक थी लाइन में जानकारी करना चाहम अपने के संगे 0-91-561-255 के दगर खुला बाई भावना रुचि सुनैना कार्यक्रम गोचियाली रेडियो मार्फत संघरे बने और बनाए सेकन अके ठो कार्यक्रम गोचाली कार्यक्रम अपने ग्रहण के लग हो तब मारे अपने के फटाफट डायल करके आई सक थी साथ में अपने के संगे हम बाटी रत्न जी साथ डेटिया मई चांद के पर बिल्कुल लाइन खुला पाए पर हम फिर से एक ठो गीत जोड़ी गीत के पास हम फिर से यह बाटी।

हजुर, कार्यक्रममा फेर से स्वागत गरब। अपने लाइन खुल्ला भावी 091-5-3-55 अगर खुल्ला भावी सटकार झटकार घाम के संगसंगे दिनचर्य बेम मजा से बीतते हुई लागत हम हन। अपने हुक्रे बिरकुले निम्ति घुमतिया अति फुर्सत के समय में आटे अपन अपन काम धंधे में लागल बाटी की मजा हेबी कुशल मंगल आराम हेबी का नाम लागत छोटी समय निकाल के लिए फिर साथ देख चाहे बिरकुले ना भूले भी मई का जानकारी करना चाहब अपने हुटन के संगे। आजकल वर्षा बूंदी के समय बावी तब मारे पानी पर्न एकदमै धेर सम्भावना थियो अत्रै रहट तपाईँ मारे अपन घर आँजर पाँजर

0: ढुलवा पैंट अपने के बिल्कुल लगे न बानी बैठे भी ओ चाहे घास काटे पड़ल सरसफाई करे पड़ल कल से एकदम सतर्क सावधानी अपना के जो काम करी कल से अपने फिर सुरक्षित रही और अपन घर पर फिर सुरक्षित होना बात जो सिखेबी मैं जानकारी करना चाहम अपने के संगे राति बिराती नहीं एक परगिल कल से सके सम्मान भी नहीं एक परगिल कल से अपने होकरे लट्ठी और टर्च लाइट के प्रयोग करके नहीं जो बानी बैठे भी मैं जानकारी करना चाहम अपने के संगे वस्ते के लडे के आंजर पांजर बैठल तमाम गांव घर सके संघर के एकचोटि सतर्क यानी कि चलाक फूके बैठ देवी का पता कब बहिया आई कब ढेर पानी बरसिकना हमन पता ही नहीं रहता मारे अपने के अगदही चाहे अपने के चलाक फूके बैठ देवी कल से ढेर ढेर ढेर मजा हुई छोट छोट लड़का बच्चन चाहे कुलवा के आदि तिर बिल्कुल अकेली ना छोड़ देवी आओ चाहे अपने होके कुलवा ढेर पानी ऐना ठाव यानी कि लडिया के आंदर पांदर बैठल संघरियों के चाहे अपने होके खैना चीज के जो हो मजा से कर भी लड़का परकन वस्ते के गर्भवती महिला होकन जो एकदम सुरक्षित ठाव में जस्ते विपद आई गल से एकदम सुरक्षित ठाव में सरना ठाव सारी कर भी गल से एकदम मजा हुई अपने फिर सुरक्षित रही अपन घर परिवार होकन फिर सुरक्षित धरवी के ना मैं जानकारी करना चाहम कोई संग्रह लाइन ना देना संकेत मिलल बाबा कहाँ से कौन संग्रह उठे हजू राम राम
1: राम राम बेटा
0: कहाँ से कहकर बोल सुन लिया हमने
1: बोरदिया राजापुर से सुशांत चौधरी
0: सुशांत चौधरी खबर कैसी बाबू
1: खबर ठीक बा कह पड़ल दादा
0: मजे बाटी हमरे
1: मजे बा कह पड़ल
0: झटकार घाम कर ले बने
1: झटकार घाम कर ले बा कह पड़ल बहुत घाम
0: बहुत घाम कर ले बा कब पानी पानी बदरी बद गया इसमें
1: हाँ कब कब पानी खतरा कब कब बदरी अस्तों कब कब
0: शुरू कर सकते भाव बना रुचि
1: अपन छोट महीन माया करना अपन से भारी महीन आदर सम्मान करना जात भात भेदभाव नहीं करना आदर गरीब नहीं छुटेना तुम्हारा पार मध्य से दूर रहना फुटबॉल वॉलीबॉल खेलना संग्रह बनना बहुत बड़ा रहना
0: अपने के भावना और रुचि कोनो संघर्य ओकरन मन परत हुई अपने से संघर्य बनना जो इच्छुक रहल संघर्य के एकदम सहज से कैसी के भेटाय सके अपने है छोड़े सकते
1: अंठानबे चौदह इक्यावन इक्यावन पचास अंठानबे चौदह इक्यावन इक्यावन पचास राजापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 3
0: आई ठहर थे नो जाके संपर्क नंबर में फिर एकदम साझे से अपने भेटाई सक जाए
1: हजुर
0: समझे सक छी संगरे उपरांत
1: टेक्निकल दीदी है अपना संगत
0: करा अब एक लाख विदा है
1: राम राम
0: राम राम बर्दिया राजापुर टीम के संगे रहे सुशांत चौधरी ढेर धन्यवाद देना चाहब सहभागी के लग वहां दी वहां के भावना और रुचि अपने मन पर थी संगे बनना और बनैना मन लागत ठिकल से राजापुर नगर पालिका टीम सुशांत चौधरी अठारे पाई सकती है कि अंठानबे चौदह इक्यावन इक्यावन पचास इन नंबर में एकदम सहज से वहां भेटाई सकती है मैं अपने मई का जानकारी करना चाहम लाइन खुला बाई अथे पर हमें फिर से एक गीत जोड़ी गीत के पास हमें फिर से Thank you.

0: हजुर कार्यक्रममा फेर स्वागत गर्न चाहब अपने निर्धारित समय फेर बिल्कुल डगर कट्टी लागल अवस्थामा हामीले आफू गलाती कुछ समय कि हम आते बाकी भाई अपने के फोन कर भी कल से फोन में कैंडिडेट होके बात बटने जो प्रयास कर भी पूरा बात बतवा के जा देवी मजा नेटवर्क हुई ठाव से साथ देवी मैं जानकारी करना चाहूँ अपने उनके संगे गोशाली कार्यक्रम हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब करीब 11 बजे समय हम सको जाने संगे हुई करती वहा छे सको जाने संग संगे बाटी अपने के संगे हमने दी जाने बाटी रत्ना जी साथ दीजिए मई चांद के पार ऑनलाइन में www.tikapurfm.org टीकापुर एफएम एप से मार्फत हमारे पात्र मार्फत नेपाली पात्र मार्फत अपने सुनती बाटी कार्यक्रम गोशाली बिल्कुल अपने लाइन खुला जानकारी गर्न चाहन्छु अपने संगे भावना रुचि सुनेन कार्यक्रम गोशाली रेडियो मार्फत चिन्जन कर देख्न कार्यक्रम गोशाली अपने अपन रानी बानी मेल खाइन संगे संगे चिन्जान हुई लग चाहिँ अपने मन प्रतीक्षा व रुचि अपने संगरे के खोजी में बाटी गले से अपने आई शिक्षी सहभागी जनाए शिक्षी का अपने मैगर जानकारी करना चाहम अपने के संगे अनिर्धारित समय बिल्कुल डगर कट्टी लागल अवस्था में हमें आपू गलाती यात्रा बटेल सम रेडियो न के साथ डेली रेडियो प्रेमी मैगर संग के ढेर धन्यवाद ओ जाके कोनो संग्रह पे फोन लगाने प्रयास कर रही भी अपने के फोन बिल्कुल सफल शायद न हिस्सा न दिन बिल्कुल फोन सफल हुई अपने फिर ढेर धन्यवाद देना चाहब और सहभागी जन संग्रह ढेर धन्यवाद मोरी बोल अपने के रेडियो सेट समय पुगा देने को से रत्ना जी फिर विशेष धन्यवाद देती मई कार्यक्रम कार्यक्रम संचालक चांद के पारे खतरा के लग भी रहे तो अपने के पल शुभ रहे राम राम
1: yeah!

0: का पिए रही था कभी पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक था
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या के उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर में
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
4: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
5: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
4: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
5: ईसीजी सेवा
4: डिजिटल एक्सरे सेवा
5: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
4: फोन नंबर 9844827359 र 9848423059 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपादेवी मंदिर नजिकै

0: से कबू का पिए रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर होस्ट पार्टी गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना कटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयके अनुरोध।
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनारमे पशु चौपाए नै बान्देबी, सड़क किनारमे मल वस्तु नै कुरा देबी, साथै सड़क किनारमा पशु चौपाए बान्के ढुङ्गा बालुवा गिट्टी मल कुराके दुर्घटना हुइले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा लेह पर्न बा।
0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय लाइकपुर।

0: फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो
1: ली डायल करी 97 620 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 620 20 300 और 98 656 92 026

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सांझेक 5 बजेक थारू भाषा खोज खबरमा अपनकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो मफे सुन्टी रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। स्वान के मूल्य उच्च, मूल्य बढ़लक मोर से व्यापार संतोषजनक निहुलक व्यापारीन के कहाई। गेटा में चिकित्सा शिक्षा संचालन कर प्रादेशिक अस्पताल के टेको 300 सया के शिक्षण अस्पताल विस्तार ओझेल में पर्ना चिंता। कंचनपुर के एकजना पैला 250 रूपया के खरीद में 10 लाख के बम्बर उपहार। ओ पूर्वानुमान में आधारित विपद प्रतिकार स्थानीय तहसम संस्थागत करना प्रतिबद्धता। आप खोज खबर विस्तार में तीन वर्ष आगसम 1 लाख तोला मन कारोबार हुईना स्वान के मूल्य अब ढाई थे से 3 लाखसम कारोबार हुई दी रहा। स्वान के मूल्य आकाशल बारहलसंग व्यापार फे खास संतोषजनक नई रहलक व्यापारी हुक्रा बटुला स्वान के मूल्य बहरलक ओर से स्वान बहरला से फिर व्यापार में कमी हुईलक सुन चांदी व्यवसाय हुकन के कहाई रहल बा। स्वयं के मूल्य बढ़ल पाछा ग्राहक नई अलमल में पर्लक को व्यापार फिर संतोष नहीं हुईलक व्यापारी हुकर बटुला। सुनीता सुन चांदी के संचालक रमेश सोफे आजकल कबू काल कल व्यापार हुईना करलक स्वयं के मूल्य बहरलक उहर से उपभोक्ता अलमल में पर्लक बटुला। और स्वर्ण चांदी व्यवसाय गोपाल सुनार स्वर्ण के मूल्य बहरक व्यापार में समस्या हुई बा। मूल्य घटल से उपभोक्ता व व्यापारी दुनू जहना मजा हुईने रह कैक बटुला। व्यापारी हुक्रा आजकल पुरान गहना मरमट करकन व्यवसाय धंटी रह। पीआर सुन चांदी के संचालक प्रकाश शाह कबू कालकल व्यापारी हुक्र ऐलक अनुभव बटुला। सामिल ज्वेलर्स के संचालक शोभा थापा बर्खा ओराइल पाछा आजकल व्यापार संतोष व्यापार हुईल से फिर संतोषजनक नहीं रहलक बटुला। आजकल व्यापार संतोषजनक नहीं हुईलक दुर्गा ज्वेलर्स के संचालक देव बहादुर सुनार बटुला। वहां व्यापार व्यवसाय बढ़ाई के लिए स्वदेश में रोजगार के अवसर फिर नहीं हुईलक मनई रोजगार के लिए विदेश गईलक ओर से यहां के व्यापार व्यवसाय में समेत असर पड़लक बटुला। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार माताहत के चाठो प्रादेशिक अस्पताल हां कैलाली के गेटा स्थित सहित दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से आबद्ध करना निर्णय करलबा। विश्वविद्यालय यह शैक्षिक सत्र थे से एमबीबीएस सहित के चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम संचालन करना तैयारी करती रलक बेला आवश्यक मापदंड पूरा कर प्रदेश सरकार के ई निर्णय ऐलक हो। तर गेटा मन 300 सया के शिक्षण अस्पताल तत्काल संचालन करना लक्ष्य ई से प्रभावित हुईना हो कि कना चिंता स्थानीय सरकारवाला हुक्र व्यक्त कलबाट। बिहीबार बैठक प्रदेश मंत्री परिषद बैठक से सेती टीकापुर लम्कीचुहा व महाकाली प्रादेशिक अस्पताल हां विश्वविद्यालय के शिक्षण अस्पताल के रूप में प्रयोग कर स्वीकृति देलक हो। इसे आगह विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा आयोग पन स्वयं मूल्यांकन बुझाई बेला सेती टीकापुर व महाकाली अस्पताल हां आबद्ध करना संबंध में सामाजिक विकास मंत्रालय के सहमति लेगिल रह। मंत्री परिषद के पाचक निर्णय संग लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल फिर विश्वविद्यालय से जोड़ना हुई बा। सामाजिक विकास मंत्रालय के अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर नीरज अर्याल के अनुसार विश्वविद्यालय के आपना शिक्षण अस्पताल पूर्ण रूप में संचालन में नियाल समय चिकित्सा शिक्षा के लाख आवश्यक मापदंड पूरा कर प्रदेश के अस्पताल हां निश्चित शर्त सहित उपलब्ध करना निर्णय कर गिलक हो। सुदूरपश्चिम जलवायु उत्थानशील तथा विपद पूर्व अनुमान में आधारित प्रतिकार्यन स्थानीय तहसम संस्थागत करना प्रतिबद्धता जनागिलबा। आज कैलाली के धनगरी में आयोजित प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रम में सरोकारवाला हुकर 11 बुंदे संकल्प सहित पूर्वानुमान में आधारित पूर्व कार्यना प्रदेश के विपद व्यवस्थापन प्रणाली में जोड़ना प्रतिबद्धता जनैलक हुई। सुदूरपश्चिम प्रदेश में राष्ट्रीय पूर्वानुमान में आधारित पूर्व कार्य के स्थायीकरण तथा अभ्यास संबंधी संवाद पाछा प्रतिबद्धता पत्र जारी करती राष्ट्रीय पूर्वानुमान में आधारित पूर्व कार्य प्रदेश स्थानीय तह के नीति योजना बजेट ओ कार्यकरण में समन्वय कर प्रभावकारी कार्यान्वयन करना उल्लेख बा वस्तक पूर्व सूचना प्रणाली निर्णय सहयोग प्रणाली तथा पूर्व अनुमान में आधारित पूर्व कार्य संबंधी संयंत्र सुदृढ़ बनैती समुदाय सम्म सूचना पुगेना प्रतिबद्धता जनागिल्बा विपदके जोखिममा पर्लक महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता हुइलक मनै ओ अन्य संवेदनशील समूहके सहभागिता ओ संरचना प्राथमिकता देना विषय फे प्रतिबद्धता मन समेत गिल्बा वस्तक विपद जोखिम व्यवस्थापनकी लागि जलवायु परिवर्तन तथा पूर्व अनुमान सम्बन्धी तथ्यांक सूचना प्रविधि अनुसन्धान ओ असल अभ्यासके नियमित आदान प्रदान तथा उपयोग करना तीन तह के सरकार बीच के समन्वय तथा विकास साझेदार निजी क्षेत्र शैक्षिक संस्था ओ नागरिक समाज संघ के सहकार्य थप सुदृढ़ बनैना प्रतिबद्धता जनागिल्बा पूर्वानुमान में आधारित पूर्व कार्य प्रभावकारी बनाए आवश्यक संस्थागत क्षमता स्रोत परिचालन तथा वित्तीय लगानी अभिवृद्धि करना ओ वाकरलाग संयुक्त प्रयास करना फे प्रतिबद्धता जनागिल्बा संघ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र मन प्रकृति मन आधारित समाधान समुदाय आधारित विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशील विकास के अभ्यास न प्रवर्धन और विकास करना विस्तार करना प्रतिबद्धता नीतिगत कार्यान्वयन में लैजिना व आवश्यक नीति योजना तथा कार्यक्रम आघ बढ़ना सहमति कई गिल्बा खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पाछाई निनीबाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
2: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ
1: संकायहरू
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस नेपाली हेल्थ एण्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस डेभलपमेन्ट स्टडिज सोसियोलोजी एण्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: स्कूल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खानेपानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाइ शाखा टीकापुर कैलाली
5: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगा आफ्नो भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी तत्काल पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से सन्ध्या 7 बजे सम्म मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्र सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। करदाता प्रोत्साहन उपहार आयोजना अन्तर्गत साउन महिना के पहिल 15 दिन के बम्पर उपहार के नतीजा सार्वजनिक हुई बा। कंचनपुर के पुनर्वास स्थित शिव कृष्ण जनरल स्टोर से 250 रूपया के सामान खरीद करलक मने 10 लाख रूपया के उपहार जीतलक हुई। कूपन नम्बर 007-315-25-44-93 हुईलक उपभोक्ता 10 लाख रूपया जीतलक हुई। हुक्र साउन 7 गते के दिन सामान किनल रह विजेता के नाम सार्वजनिक कई गिलनी हो। अन्य 15 जना 1-1 लाख रूपया के उपहार जीतलबाट आन्तरिक राजस्व विभाग के आज अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरेर उपहार विजेता बारे जानकारी दिएगिलक हो। करदाता प्रोत्साहन उपहार योजना अन्तर्गत उपभोक्ता हन बिल लेना बानी के विकास गरैना व कर प्रणाली थप प्रभावकारी बनैना उद्देश्य योजना सञ्चालन गरिगिलक हो। नेपाल शिक्षक महासंघ भदौ थेसे आन्दोलन गर्न हुइल्बा। शिक्षक महासंघके तेस्रो राष्ट्रिय परिषद बैठक से भदौ से आन्दोलन करना निर्णय करलक महासंघ शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन करके जानकारी करैलक हो। परिषद बैठक से आगामी भदौ थेसे आन्दोलन करना लगायत के 15 बुँदे निर्णय सार्वजनिक करलबा। आन्दोलन के मिति व कार्यक्रम तय करना अधिकार परिषद से विस्तारित कार्य दलीय बैठक न प्रत्यायोजित करगिलक महासंघ जनैलबा। विगत के व समसामयिक लौ शैक्षिक तथा पेशागत माग समेत समावेश गर्कन भदौ ठेसे आन्दोलन गर्न निर्णय हुलक महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुबेडी जानकारी गरेलबाट। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम विश्राम पाछाइनी निबाटी सुन्ति रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
6: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा
7: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
6: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
7: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
6: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 98688-0008 र 98-25-67-77-72।
8: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
9: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
8: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटरा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
10: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
11: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
12: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
13: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808

0: वैश्विक उपाय खोज्नमा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता फे जनैलाबाट यदि कृत्रिम अभाव हो कलसी असिन काममा संलग्नता हान कार्यवाही गर फे आग्रह कलबाट याकर बारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी आफन जवाब डेलाबाट तर आधा सिलिण्डर ओ पूरा सिलिण्डर के व्यवस्था के कारण कुछ असहजता हुइला कुहरसे नागरिक के गुनासा कतरा आइला को सम्बोधन कलक विवरण फे उहाँ बटुलेबाट अनुगमन कर्ती रलक फे जानकारी करैलेबाट वस्तकन यी विषयमा एलपी ग्यास के आपूर्ति ओ वितरण कार्य सहज बनाइक लागि सक्कु निजी क्षेत्र उपभोक्ता अधिकार कर्मी संचार कर्मी जनप्रतिनिधि ओ सरकारी निकाय ओ आम उपभोक्ता हन सद्द जस्त सहयोग प्राप्त हुन अपेक्षा ढलक मन्त्री गौरी बटुलेबाट यह समाचार के संग 5 बजे खोज खबर हो रही जेती जेती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से स्वान के मूल्य उच्च मूल्य बहरलक से व्यापार संतोषजनक नहीं हुई व्यापारी के कहाई गेटा में चिकित्सा शिक्षा संचालन कर प्रादेशिक अस्पताल के टेगो 300 सैया के शिक्षण अस्पताल विस्तार ओझेल में पर्ना चिंता कंचनपुर के एकजना पहिला 250 रूपया के खरीद में 10 लाख के बम्पर उपहार ओ पूर्व अनुमान में आधारित विपद प्रतिकारी स्थानीय तहसम संस्थागत करना प्रतिबद्धता लीता आबकला थारू भाषक खोज खबर अतरह और समाचार 6 बजे खोज खबर सुन सेकबी आबक लागी खोज खबर से मई गीता विदाहटु सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्ती रवि राम राम
1: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
2: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
1: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
2: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
1: अब त म ढुक्क
3: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
2: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
4: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे घुवा जागिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइन त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुगर बना कन लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: बाबु ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
5: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
6: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुनी
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

हरे प्रभु भजन कहे न बोला, हरे भजन कहे न बोला। महाराज परीक्षित सुखदेव ने बताऊन भोज से प्रसंग में लहू तवन कादरी शेश्वर अब यहाँ मैं बताऊ सृष्टि संबंधी को प्रगण यही सात अध्याय रोको थो हिरण्याक्ष को उपाख्यान ने अब फिर सृष्टि संबंधी को उपाख्यान ने राजा परीक्षित सुखदेव बड़ो प्रेम प्रभु सृष्टि संबंधी उपाख्यान फिर बताऊ संबंध को कथा इस अध्याय जय बोलो श्रीमद भागवत महाप्राण।